जाकर, अरे तेरी भूला आकर जाकर पीकर लेकर, आकर जाकर पीकर लेकर, आकर जाकर पीकर लेकर, पीकर लेकर, पीकर लेकर, पीकर लेकर, आकर जाकर, आकर जाकर।

0: Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना.

0: This is Sunrise Retro.
1: London का Retro Asian Mix Sunrise Retro को सुनने के लिए शुक्रिया. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को सुनना मत भूलिएगा ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, दुनिया भर में वाया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स या रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज रेट्रो टुडे, लंदन रेट्रो एशियन मिक्स. कॉल द सनराइज रेट्रो सेल्स टीम ऑन 020-8574-7777. Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.

0: This is Sunrise Retro, London's retro Asian mix.
1: Ready for a taste of Sri Lanka? Come home to Sri Lanka at Copper Ceylon, Bromley's multi-award-winning Sri Lankan restaurant. Feel the heart of authentic curries, taste crispy, delicious hoppers, sip signature cocktails, and soak up the vibrant atmosphere of Sri Lanka right here in Bromley. Whether it's a night out, a special celebration, or catering for your next event, Copper Ceylon brings the flavours of the island to your table. So what are you waiting for? Book your table now at copperceylon.com. Copper Ceylon, come home to Sri Lanka.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
3: And now, the weather.
4: Outside, gloomy skies, a persistent drizzle, and a chilly wind blowing from the west, north, east, and south.
5: But inside, temperatures of toasty warm, with a high chance of plush rugs, soft lighting, and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting, and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T's and C's and exclusion supply. Find out more at ikea.co.uk.
6: Ye hai Sunrise
0: Retro. Back-to-back songs with the Sunrise Radio app. Download now for free for Apple and Android devices.

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

सवेर, चैन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: Sunrise Retro. Tired of running from the kitchen shop to the tile shop to the bathroom shop and still not finding what you want? At Casa Vera, it's all in one place. Kitchens, bathrooms, tiles, lighting, everything made bespoke to your design without the hefty price tag. Come and see it all under one roof. Visit the Casa Vera Experience Centre, Unit 129, Clock Tower Road, Industrial Estate, West London, TW7 6GF. CasaVera.co.uk.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: Just dropped. The brand new TUI Smiles Rewards Club. Join for free today to unlock exclusive members-only deals, personalized rewards, and chances to win amazing prizes. Get even more from your holiday. Join for free today. TUI. Big rewards. Big smiles. Atoll and Avta protected. T's and C's apply. See website for details.
3: Advertise on Sunrise Retro today. London's Retro Asian Mix. Call the Sunrise Retro sales team on 020-8574-7777.
4: Ye hai Sunrise Retro.
5: Saavan ka mahina pavan kare soru.

0: This is Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix. Are you due for a remortgage on your home or buy-to-let property? Then look no further than Cashback Remortgages. Let our experienced team get you the best available remortgage deal in the market and receive some cashback on your remortgage. Call 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Cashback Remortgages, West London-based brokers. Authorised and regulated by the FCA. T's and C's apply. Cashback bonus with no fee.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
2: Celebrate autumn at Hobbledown Heath, London's most magical pumpkin patch. Hunt for your perfect pumpkin, toast marshmallows, play seasonal games, enjoy entertainment, fairground rides and capture memories at new photo points. There's a perfect pumpkin patch experience for everyone. A classic pumpkin day or illuminated pumpkin nights, even special dog-friendly dates or a great value bundle ticket for access to the park and pumpkin patch. For information and tickets, visit hobbledown.com/Hounslow. ये है सनराइज
0: रेट्रो बैक टू बैक सॉन्ग्स विद द सनराइज रेडियो ऐप डाउनलोड नाउ फॉर फ्री फॉर एप्पल एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस.

0: This is Sunrise Retro, London's retro Asian mix. Love the look of Italian marble, German kitchens, and Scandinavian design? You don't need to travel the world or spend a fortune to get it. Casa Vera brings the whole European dream home. Every bit as beautiful, made bespoke to you. Your whole home, all in one place, right here in West London. Visit the Casa Vera Experience Centre, Unit 129, Clock Tower Road, Industrial Estate, West London, TW7 6GF, casavera.co.uk.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
2: Thank you for tuning into Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix. Don't forget to tune into our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, worldwide via sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app, or for your home smart speakers and on the Radio Player and Nation Player app. Ye hai Sunrise
0: Retro.
3: Hit of the hour with Sony Max. From smashing sixes to smashing it as a host, cricketer Rohit Sharma brings you a brand new fun show, Family Full House. Watch this weekend, 9:30 p.m. on Sony TV.

0: सनराइज रेट्रो लंदन का रेट्रो एशियन मिक्स सनराइज रेट्रो को सुनने के लिए शुक्रिया। हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को सुनना मत भूलिएगा ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, दुनिया भर में वाया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स या रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप पर। एडवर्टाइज ऑन सनराइज रेट्रो टुडे, लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स। कॉल द सनराइज रेट्रो सेल्स टीम ऑन 020-8574-7777।
1: London's Retro Asian Mix. Sunrise Retro.

0: Sunrise Retro.
1: Sunrise Retro, London के Retro Asian Mix को सुनने के लिए शुक्रिया. याद रखिएगा, हमारे सिस्टर स्टेशन Sunrise Hits को भी आप सुन सकते हैं. The UK's smoothest Asian hits, nationwide on DAB, on the free Sunrise Radio app or online sunriseradio.com पर. Advertise on Sunrise Retro today. London's Retro Asian Mix. Call the Sunrise Retro sales team on 020-8574-7777.
2: ये है Sunrise Retro.

0: मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।